0: Terima kasih warga masih bersama kami. Dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika.
2: Bursa Dedeng Kuya.
3: कौन है ये जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा? Who is he?